0: फैक्ट राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवाना को न बगैर निमगिड़ी हुई कुचर तक जवाना को पवक बानी गम उनक ले लेशी न रारवान वक की दग जवान की सासु दखाइस द खराबे दो बाईस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डेर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर रजू की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजिदा ना द दग दानो चुकम दागो न दी अगह मुकम्मल तो गबाने खत्म होगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानू दागुना प मुकमल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

0: नेक्स्ट कॉलर गुरु जी सुखराज दखन जैन अस्सलाम वालेकुम जी।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम बखैर ना बखैर सिंगे खी ठीक ठाक है फातमा फातमा सिंगा फरशुने दियो विंजल
1: कना
0: तंकड़े दो सिंगा दे
1: तंकड़े दे
0: नो बेता तो से वेलो
1: खबर कई खबर वादा न कई
0: खबर नट पना कार खैर खरीद दे खैर खरीद दे सिंगा नन्मस पखे आओ नुम में बदल के होता उस तरह मैम बस प्रे की
1: देखा
0: न मैम बस रेडियो बने अड़ो वैम ना तो सुबह गमदन मा सर जंगू न खो
1: तमाम के
0: मुफ्ती से वो मुफ्ती साहब खबर पदी हुई मानूम फाइनल होता था ना मैम सही ठीक थे सही दे आओ नोर
1: छोटी
0: हुआ छोटी हुआ
1: छोटी
0: हुआ सही दे खबर वे नन बस पखे
1: खिचड़ी
0: चार सदवाल चावल याद है नो दा तो पहोल शे गना दीदी सिंग चली लग चल खूखा मुंगता शे जोज गमदन का मिसाल दासे वक्त हालात उस गमदन से बदल गया। हां
1: हम तो पहोदा
0: ना सिंग ओ पहोओ दीदी तरीके कार से दीदी रेसिपी सिंग दा
1: दीदी दूर अलवे तरीका दीदी वाला बहुत कम पहोयो शे अगर
0: बस का बस खबर है गमदन से पठे आओ खबरो बन गंदन आस पादा छे तल गंदन
1: सही मामा
0: ताल चल न दर्जी नो
1: आ वो को वाला फद नरई नरई की आ लाशने मई वाला मो ये छे खफली मजेदार तड़का
0: तो लगई ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए तोबा तोबा
1: सर पर से गोड़ी
0: बात सही जडिक दे फातिमा ख्याल साथ जान मनना शुक्रिया देर मनना खा आकिब जान जी कम देने सम गुस्सा गुस्सा दे सम गुस्सा गुस्सा दे नो वही वही वही वही वही वही नो मासर दाग ये रहता है ची प्रोग्राम नरुस तो कम देने मासर जंग होना की है अहा

मलीहा तन्हा मैसेज के जी मनाना शुक्रिया मलीहा तन्हा ढोलता सलाम नकड़ी दी और नेक्स्ट ताहिर भैया आकिब भाई मु राला नजर अकड़ गंदफ ते राव ले गई ची दम वर्तो कमाओ दम ना दम ले बोझ.

ठीक है चेतावनी 0-300 बैक टू बैक चिकम नाइन फोर बंद खटकी गिरा खटकी अब सुमंत ड्यूटी ऑफिसर द वेना मुताबिक चिकम दे सर द नेट मसला दा नुबारल हनंद जुमेरात पुरुष दा औ द जुमेरात पुरुष बंद तासु द हैदर मुमन होम्योपैथिक जन अस्पताल नंबर एक असले सी द अस्पताल हेल्पलाइन नंबर चिकम दे सदा सीधे 0-331-93-94-94 बिलाल जान पोख इजाजत अखलम द लो अल्लाह।

0: उमरा जोर दे
1: उमरा जोर
0: वेलकम टू उनको दस वकाल जम का विषय फनर सोटे 2495 बानी पर 938495 प्रोग्राम से जुड़ो मा टॉपिक सिकंदिया का तासला मारा वड़े टॉपिक में तासला खमरा वड़े दे अब हम तासर शेर को मा

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर सवाबी।
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94 सवाबी।

दे के कहते के यार हमें एक अच्छा सा शेर जो है वो सुना दे, लेकिन उसने तो नहीं कहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। आगे जनाब चल चल चल चल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: तोलू मुसलमानानु रुणता खुसूसी इतला इज्तिमा सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल पशान दाज़ल्लाहुम मंज़िली कीगी खपा अकीदत और इहतिसाम सितंबर द ज़ियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे ज़ीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा साहब चिपदी इज्तिमा के वा उलमाए कराम और नात खाखली चिपहागे की मेहमान खुसूसी बई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम नौशेहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह साहब चार सदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी साहब पीर सबाक शरीफ नौशेहराना लदीना अलावा मौलाना एहसानुल्लाह साहब द पेखवरना अली हक्कानी साहब और शेख मोहम्मद खान साहब द चोटा लाहौरना बखुसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपके जीशान हनफी मकबली जान साहब अयूब शाह साहब और नूर मजीद योशमार नात कवि बतास्तुल मुसलमानान तख्वास्ते चिपसीरत खातम उन्नबीन इज्तिमा के भरपूर दादात की शिरकत होके और सवाबिदारैन हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा साहब और मौलवी साबित शाह मजहरी साहब पता मदरसा खानका मियां डेरे सवाबे नुतास्तुल पकार दे चेदी फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद द मालूमात द पारा द मोबाइल मेरा 0334-9040-877।
2: मावेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
2: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स फोन 0938-273265।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
5: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।